सतनाम श्री वाहेगुरु जी सात ना चाले बिन भजना बिखिया सगली चार हर नाम कमावना नानक एहो तन सारा सो को टल गुरु सेवी है एनस सहज सुभाय दर्शन पसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन पसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए ताना वाहेगुरु जी सोरठ महला पंजवा दुर्त गवाया हर प्रभ आपे सब संसार उबारिया

दूरत गवाया हर ब्रभ आपे सब संसार उबारिया पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी अपना बिरद समारिया होई राजे राम की रखवाली।

0: मोहे तिसका परभाषा, बख्श ले सब सच्चे साहेबा। सुन नानक की अरदासा, पत तू दारण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श ले सब सच्चे साहेबा। सुन नानक की अरदासा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहेब जी। सोट महला पांजेवा, गुर का सबर कुवारे, चौकी चो गिरद हमारे। राम नाम मन लागा, जम लजाय कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल। पूर्ण पुरख विधाता रहाओ, नानक प्रभ वनासी। ताकि सेवन बिरती जासी, आनंद करह तेरे दासा। जा पूर्ण हुई आसा, बिलावल महला पांजेवा। ताती भाव न लगाई, पार ब्रह्म शरण आई। जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई। राम नाम आओ खुद दी।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजेवा करो बेनती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाड़ चलो हर लाह आगे बसनो सुहेला औद कटे दिन सुरैना रे मन गुरमिल का सवारे रहाओ एव संसार बेकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाई पिया वह इहो रस अकथ।

रंग पलंग अनेक रंग अपन करते बाजिया अंदर जियो सबकी जान ला सबकी तेरे वाल तेरा घर पला तेरे कारण।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न हो वई जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार पुखिया पुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस स्याण पा लख हो हे ता इक न चलै नाल किव सचियारा होइए।

ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनया मुख सालाहन मंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगत सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अड़सठ का स्नान सुनै पढ़ पढ़ पावे मान सुनै लागे सहज ध्यान नानक भगत सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सरा गुणा के गाह सुनै सिख पीर पात साह सुनै अंधे पावे राह सुनै हाथ होवे असगाह नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास मन्ने की गत कही ना जाए जे को कहे पिछे पछताए कागद कलम ना लेखन हार मन्ने

लख आगस आगास उड़क उड़क पाल सकी वीर कहने के बात सहस अठार है कहन कतिबास लू एक तात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप साला ही साला है इति सुरत न पाईया नदिया अत्यवाह पवह समुद न जानिए है समुद साह सुल्तान ग्रह सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तस मन हो ना विसरह अंत न सिवति कहन न अंत अंत न करण देन न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब ऊंचा थाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाउ एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुत

चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाली चतुर चक्र काली चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न प्रमंग न पितर न कर्मंग न काय जन्मंग अजाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र पृथ्वी से अधिस अदृस अकृस भगवती छंद त्व प्रसाद कथते किया छिजदेस है किया पिज पिस किया गंज कर्म है किया पंज भरम है किया पिजलोक है किया दित सोक है केव दूत वर्ण है केव भूत करण है कि राजंग प्रवाह है कि धर्मंग तुजा है कि अशोक वर्ण है कि सर्व अपर्ण है कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपवन रूप है कि आदि अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि एक है अधीन है कि रोजी रजा के रहीम रिहा के कि पाक वैब है कि गैबुल गैब है कि अफबुल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहंद है कि राज करहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पहाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र दिश है कि सर्वत्र पिस है कि सर्वत्र मान्य है सदैवंग प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कलीम है कि परमंग फहीम है कि आकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुसनल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजूल निधान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है नेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रपुक्त प्रवाह है सुजुक्त सुदा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाध रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रकामे त्रिवर्गंग त्रिभाद्य गंजे अघाद्य सुभंग सर्वभाग्य सुसर्वा अनुराग्य त्रिपुक्त स्वरूप है अछिज है अशूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैवंग सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है तंद है अबंध है अपक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है संभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है सरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग अंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैवंग प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विपूते परमाथंग परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विपूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात्य न मात्य न जात्य न पात्य निरसाकंग श्रीक है अमितो अमीक है सदैवंग प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करहीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब के राह है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सर्वल गवन है हमेशल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जुरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंगा नंग है कि अमितो अपंग है मद पार छंद त्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर अगंज हर नर परपंज अनुगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनुपव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अनसिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अपंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनुपव अनास तृत तर तुरास
ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ਏ ਕੈ ਸਦਾਹੁ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਸਿਜ ਗਾਤ ਅਜ ਜਨਾ ਬਾਤ ਅਨਝੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ ਆਢੀਠ ਧਰਮ ਅਤਿ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨਵਰਣ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤੁਐ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾਲੈ ਹੈ ਅਰਕਾਲੈ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮਹਿਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੀਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬਵਾਰਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤ ਕੇ ਤਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨਯ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨਯ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਪਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਰ ਹੈ ਸਰਬ ਪਾਸਯ ਹੈ ਸਰਬਨਾਸਯ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਬਿਸੰਬਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ਥਪਾ ਥਪ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰਤ ਹੈ ਧਰਨੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਕਾਇਕ ਹੈ ਬਿਸੁੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲੈ ਹੈ ਨਿਰਪਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵਭੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਬ ਆਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਗ ਤਾਮ ਸੰਗ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਤਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁੱਧ ਜੁੱਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦੰਗ ਬਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਪੈ ਅਬੈ ਅਪੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਅਪੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾਹ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨਾ ਰਾਗੇ ਨਾ ਰੰਗੇ ਨਾ ਰੂਪੇ ਨਾ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਅਪਰਮੰਗ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤਲ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਅਗੰਜਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨਰਕਾਮੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤਲ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸਧਰਮੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲਕ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਵਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰਿਅੰ ਕਰਿਅੰ ਕਰੀ ਮੁਲ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸਵਯੰ ਪਵ

0: जय मात पिता सुत मीत न पाही,
1: मानुहा नाम तेरे संग सहाय।
0: जय महाभयान दूत जमदल, जय
1: केवल नाम संग तेरे चल।
0: जय मुस्कल हो वह अत पाही,
1: हर को नाम खिन माहे उदारी।
0: अनेक पुनः चरण करत नहीं तरे,
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे।
0: गुरमुख नाम जप हो मन मेरी,
1: नानक पावो सुख नेरे।
0: सकल सृष्टि को राजा दुखिया,
1: हर का नाम जावत हुए सुखिया।
0: लाख करोरी बंधन पर,
1: हर का नाम जावत निस्तर।
0: अनेक माया रंग तिख नाम बुझावे,
1: हर का नाम जावत आगा।
0: जिह मार्ग हो जात अकेला,
1: हर नाम संग हो सहेला।
0: ऐसा नाम मन सदा त्याही है,
1: नानक गुरमुख परम गत पाई।
0: छूटत नहीं कोट लख बाही,
1: नाम जपत पार पराही।
0: अनेक विघन जह आए संघार,
1: हर का नाम तत्काल उधार।
0: अनेक जोन जन मैं मर जाम,
1: नाम जपत पावे विश्राम।
0: हो मैं लामल कब हो न तो हुए,
1: हर का नाम कोट पाप खोवे।
0: ऐसा नाम जप हो मन रंग,
1: नानक पाइये साध के संग।
0: जिह मार्ग के गने जा ही न कुछ,
1: हर का नाम उहा संग तो संग।
0: जिह पै डै मह अंध गुबारा,
1: हर का नाम संग उजिया।
0: जह पंथ तेरा को ना सुनियानु,
1: हर का नाम तै नार पछानु।
0: जह महा भयान तपत बहु काम,
1: जय हर के नाम की तुम ऊपर शान।
0: जह त्रिखा मन तुझ आकर खे,
1: जय नानक हर हर अमृत बरखे।
0: भगत जना की बर्तन नाम,
1: संत जना के मन विश्राम।
0: हर का नाम दास की ओट,
1: हर के नाम उदरे जन को।
0: हर जस करत संत दिन रात,
1: हर हर औख साथ कमात।
0: हर जन के हर नाम निधान,
1: पार ब्रह्म जन की नो दान।
0: मंत्र रंग रते रंग एक,
1: नानक जन के व्रत विवेक।
0: हर का नाम जन को मुक्त जुगत,
1: हर के नाम जन को तृप्त भुगत।
0: हर का नाम

0: ज्ञान सब ध्यान
1: पाठ शास्त्र सिमरत बखियान
0: योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया
1: सकल त्यागवन बजे फिर
0: अनेक प्रकार किए बहु जतना
1: मन दान हो मैं रत्न
0: शरीर कटाए हूँ मैं कर राती
1: भारत नेम करे बहुपति
0: नहीं तुल राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौ खंड पृथ्वी फिरे चर जीव
1: महादास भी सरथी
0: अगर माहे होमत प्राण
1: कन कह सब है भरपूर दान
0: नवली कर्म करे बहु आसन
1: जैन मारे संयम आसाधन
0: निमुख निमुख कर शरीर कटावे हर के नाम सम सरकश नाहि
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि
0: मन कामना तीर्थ देह छुटे
1: गर्ग मानना मन ते हुटे
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की मैल न तन ते जात
0: इस देही का बहु साधना करे
1: मन ते कभू ना बिखिया डरे
0: जल तो वह बहु देह अनीत
1: सुत कहा होए काची पी
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे पतत बहुमूच
0: बहुत स्यान जम का पहु व्यापे
1: अनेक जतन कर तिस न
0: धरा एक अनेक अगन ही बुझे
1: कोट पाप दर गए ने सी
0: छूट सनाही उब पयाल
1: मोहे व्यापे माया जाल
0: अवर करतूत सकली जम डन
1: गोविंद भजन में तिल नहीं माने
0: हर का नाम जपत दुख जाए
1: नानक बोले सहज सुभाए
0: चार पदार्थ जे को मांगे
1: साजना की सेवा लागे
0: जे को अपना दुख मिटावे
1: हर हर नाम हृदय सदगावे
0: जे को अपनी शोभा लोरे
1: सा संगे हो में शोरे
0: जे को जन्म मरण ते डरे
1: साजना की सरनी परे
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताके बल बल जासा
0: सगल पुरख में

0: राष्ट्रपति
1: साधक संग मुख उजल होत
0: साधक
1: संग मटे अभिमान
0: साधक संग पटे सो गया
1: साधक संग बुझे परम नीरा
0: संग सब होत नवेरा
1: साधक संग पाए नाम रतन
0: साधक संग एक ऊपर जतन
1: साधक महिमा वर्ण कौन प्राणी
0: नानक साधक शोभा ब्रह्मा है समान
1: साधक संग गोचर मिले
0: साधक संग सदा पर फुल
1: साधक संग अब है बस पंच
0: संग मृत रस पुंच
1: साध संग हो सबकी रेन
0: साधक संग मनोहर वै
1: साधक संग न कत हूं ता वे
0: संग अस्तद मन भावे
1: साधक संग माया ते पहन
0: संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
1: साध संग दुश्मन समीत
0: साधु के संग महापनीत
1: साध संग किस्यो नहीं बैर
0: साधक संग ना बिगा पैर
1: साधक संग ना ही को मंदा
0: साध संग जाने परमानंद
1: साधक संग ना ही हो ताप
0: साधक संग तजे सब
1: आप आपे जाने साध बढ़ाई
0: नानक साध प्रभु बने आई
1: साधक संग ना कबहू ता
0: वे साधक संग सदा सुख पावे
1: साध संग बस्त गोचर लहे
0: साधु के संग जार सहे
1: साधक संग बसे थान ऊंचे
0: साधु के संग मैल पहुंचे
1: साधक संग दृढ़ सब धर्म
0: साधक संग केवल पार ब्रह्म
1: साधक संग पाए नाम निधान
0: नानक साधु के करवान
1: साधक संग सब कुल उदार
0: संग साजन मीक टम निस्तार
1: साधु के संग सूत अन पावे
0: जिस्तांते सब को बरसावे
1: साध संग धर्म राय करे सेवा
0: साधक संग सो बासुर देव
1: साधु के संग पाप पलाये
0: साध संग अमृत गुण गाए
1: साधक संग सर्व थान गम
0: नान साधक संग सफल जनम
1: साधक संग नहीं कश कहाल
0: रसन पेट तो तनहा
1: साधक संग कलुखत हर
0: साधक संग नरक पर हर
1: साधक संग इहा उहा सुहिला
0: साध संग बिछड़त हर मेला
1: जो छे सोई फल पावे
0: साधक संग ना व्यर्थ जावे
1: और ब्रह्म साध रद वसे
0: नानक उदरे साध सुन रसे
1: साधक संग सुनो हर नाव
0: साध संग हर के गुण गावे
1: साधक संग न मन ते बिसरे
0: साध संग सर पर निस्तर
1: साधक संग लगे परम मीठा
0: साधु के संग काट काट डीठ
1: साध संग पै आज्ञाकारी
0: साध संगत पै हमारी
1: साधक संग मिटे सब रोग
0: नानक साध बेटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जान है
0: जेता सुने ते ताव ख्याने
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर
0: साध की उपमा रही पार पूर
1: साध की शोभा का नाही अंत
0: साध की शोभा सदा

0: ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश,
1: जैसे तारु पर आकाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान,
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अपमान।
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा,
1: मन अपने है सब ते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जान पहे,
1: नानक जिन प्रभ आप करे।
0: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
1: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कष्ट पुराना पया।
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
1: ब्रह्म ज्ञानी की दिव्य अमृत वर्षी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
1: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल युक्ता।

0: वंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुफल
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल भला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार
1: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग
0: ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभु
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सत जागत
0: ब्रह्म ज्ञानी अहं बोध त्याग
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बना
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बीता
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए चिंत
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप
0: ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श वट भागी पाई है
0: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई
1: ब्रह्म ज्ञानी का खोज है महेश्वर
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन मान
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भीद
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा दे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाख्य
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान
0: है ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी सा जीवे नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
0: ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म

0: मिथ्या नाही रसना परस
1: मन में प्रीत नंजन दर्श
0: परत्र रूप न पेख्या नित
1: सार
0: के सुने काहू की निंदा
1: सबके जाने आप उसको
0: गुरु प्रसाद बिख्या पर हर
1: मन की वासना मानते डरे
0: इंद्रिय जित पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट मदे को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: की माया ते होए भिन्न
0: कर्म करत हो वह निह कर्म
1: वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बच
1: केवल पग कीर्तन संग्रह
0: मंत्र अंतर सिमरन गोपाल
1: सब पर हो वित कृपा
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानको वैष्णो परम गत पावे
0: भगवती भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्यागे दुष्ट का संग
0: मन ते बिन सह सगला भरम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साथ संग पापा मल खोवे
1: इस भौती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मन तन अर्पे विष्णु प्रीत
0: हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध
1: राम नाम आत्म है सो
0: राम नाम सार रस पीवे
1: के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पांडव पे जो नाया
0: वीर प्राण समृद्ध बूझे मूल
1: सुख में जाने असूर
0: चौह वर्णा को दे उपदेश
1: नानक स्पंड को सदा देश
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
1: चौह नामे जपे को नाम
0: जो जो जपे तिस की गत हुई
1: संग पावे जन को
0: कर कृपा अंतर उतार
1: प्रेत मुद पाथर को तारे
0: सर्व रोग का औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण गा
0: काहू जुगत कितै न पाई धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तुस नदरी आया
1: दास अंतर पाए तिन पाया
0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास दर गए परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: इस दास को सब सो जी पर
0: सगल संग आत्म उदास
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे
1: जीवन मुक्त सो कहावे
0: तैसा हरख तैसा उस सूग
1: सदा अनंत नहीं व्योग
0: तैसा सुरन तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत तैसी विखर
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंग तैसा राजा
0: जो वरताए साई जुगत
1: नानक को पर कहिए जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ
1: जे जित का राखे तैसा तिन्ना
0: आपे करन करावन जुग
1: प्रापावे सो ये फनो
0: असर आप ही अनंत तरंग
1: लखे न जाहे पार ब्रह्म के

0: कोड़ राजे रसपोगी,
1: कई कोड़ पंखी सर्पो पाए,
0: कई कोड़ पाथर वृक निप जाए,
1: कई कोड़ पवन पानी वे संतर,
0: कई कोड़ देश भूमंडल,
1: कई कोड़ सस्यर सूर नक्षत्र,
0: कई कोड़ देव दान इंद्र से शतर,
1: सगल समग्री अपने सूत तार,
0: नानक जे जिस पावे तिस दिन निस्तार,
1: कई कोड़ राजस्थान सातक,
0: कई कोड़ वेद प्राण सिमर शास्त्र,
1: कई कोड़ किए रतन समुद्र,
0: कई कोड़ नाना प्रकार जंत,
1: कई कोड़ किए चिर जीवे,
0: कई कोड़ गिरी मेर स्वर द्वीप,
1: कई कोड़ जख किन्नर पिशाच,
0: कई कोड़ भूत प्रेत सुगर मृगाच,
1: सब ते निर सब हूते दूर,
0: नानक आप लिप्त रहा भरपूर,
1: कई कोड़ पाताल के वासी,
0: कई कोड़ नट सुर नवासी,
1: कई कोड़ जन्म है जीव है मर,
0: कई कोड़ बा जो नहीं फिर,
1: कई कोड़ बैठत ही खा।

0: अष्टपति
1: जिसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरक पाती हो स्वान
1: जो जन्म जीवन वंत
0: सो हो वधविष्ठा का जंत
1: आप कर्म वंत कहा
0: जन्म रेबो जोन परमा।

0: प्रभु सोए।
1: जो कुछ किन्नो सो अपने रंग
0: साते दूर सब कैसा
1: बुझे देखे करे बिबेक
0: आपे एक आपे अनेक
1: मरे न बिन से आवे न जाई
0: नाने साधे रहा समाए
1: आप उपदेश समझे आप
0: आपे रचया सब कैसा
1: आप किन्नो अपन विस्तार
0: साक्षी उसका।

0: संत के दुखन आर जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में बाए,
0: संत के दुखन मत हुए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते ही,
0: संत के हते को रखे ना कोई,
1: संत के दुखन थान प्रस्त होए,
0: संत कृपाल कृपा जी करे,
1: नानक सत्संग निंदक भीतर,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काल जोन,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाई,
1: संत के दुखन त्रिक जोन करमाए,
0: संतन के दुखन तृष्णा में जले,
1: संत के दुखन सब कौशल,
0: संत

0: संत के दुखी को सब त्याग,
1: संत का दुखी महा अहंकारी,
0: संत का दुखी सदा विकारी,
1: संत का दुखी जन्म में मरे,
0: संत की दुखना सुख तेटरे,
1: संत के दुखी को नाही ठाऊ,
0: नान संत पावेता लय मलाई,
1: संत का दुखी अद बीच ते टूटे,
0: संत का दुखी किते काज न पहुंचे,
1: संत के दुखी को ध्यान परमाहिए,
0: संत का दुखी उजड़ पाइए,
1: संत का दुखी अंतर तेथो था,
0: जो सास बिना मृत की लो,
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही,
0: अपन बीच आपे ही खाए,
1: संत के दुखी को अवरना रखन हार,
0: नान संत पावेता लय अवार,
1: संत का दुखी यह बिललाई,
0: जो जल भ्योन मछली तट फटाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
0: जो पावन इदन नहीं त्रापे,
1: संत का दुखी छुटे केला,
0: जो बार तिल केत माए देला,
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सद में त्याग,
1: कीर्त नंदक का तुरही पया,
0: नानक ज्योतिष पावे सोई थिया,
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दर्ग मिले सजाए,
1: संत का दुखी सदा सहकाई है,
0: संत का दुखी ना मरे ना जवाई,
1: संत के दुखी की पूजा न
0: संत का दुखी चले नरासा,
1: संत का दुख न त्रष्ट कोई,
0: जैसा पावे तैसा कोई,
1: पया कीर्तन मिटे कोई,
0: नानक जाने सच्चा सोई,
1: सब कट तिसके ओ करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार,
1: सब की उस्तत करो दिन रात,
0: तिसे त्यावो सास ग्रास,
1: सब कुछ वर्त्या तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा कोई।

0: राष्ट्रपति।
1: मानो कीट एक वृथि सब जान,
0: देवन को एक भगवान,
1: जिसके दिए रहे अगाही,
0: और ना तिसना लागे आए,
1: मारे रखे एको आप,
0: माने के कृष्णा ही आत,
1: इसका हुकुम बूझ सुख हुई,
0: इसका नाम रा कंठ परोए,
1: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोई,
0: नानक बिगन ना लागे कोई,
1: उसत मन में कर निरंकार,
0: कर्मन मेरे सद व्यवहार,
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सदा से ला कर ले जियो,
1: नैनो पेख ठाकुर का रंग,
0: सत्संग बिन से सब संग,
1: चरण कला मार्ग गोविंद,
0: मिले पाप जपिए हर बिंद,
1: कर हर कर्म श्रवण हर कथा,
0: कर के नानक उज्जल मथा,
1: बड़पागी ते जान जग माहे,
0: सदा सदा हर के गुण गाहे,
1: नाम नाम जो कर है विचार,
0: से तन बंत गनी संसार,
1: मंत्र मुख बोल है हर मुखी,
0: सदा सदा जानो ते सुखी,
1: एको एक एक पछान,
0: एतत कियो सो जी जाने,
1: नाम संग जिस का मन मानिया,
0: नानक तने निरंजन जाने,
1: गुरु प्रसाद आपन आप सुजे,
0: जिसकी जानो तिस ना बुझे।

0: जिसको हर प्रभ मन चित आवे
1: संत सेला नहीं डोला
0: जिस प्रभ अपना कृपा करे
1: सो सेवा को किस ते डरे
0: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: सोदत सोदत सोदत सीजिया जब देखो तब सब किस मूल
1: नानक सो सुख में सोए स्थूल
0: नहीं किस जन्मे नहीं किस मरे
1: अपन चलता आप ही करे
0: अपन जावन दृष्ट अंदृष्ट।

0: कीमत आपे बाई,
1: सब कट तुसके सब तुसके ठाऊ,
0: जब जब जीवे नानक हर नाम,
1: नाम के तारे सगले जंत,
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड,
1: नाम के तारे सिमृत वेद पुराण,
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान,
1: नाम के तारे आकाश पाताल,
0: नाम के तारे सगल आकाश,
1: नाम के तारे प्रिया सब पवन,
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण,
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए,
0: नानी चौथे पद में सो जन गत पाए,
1: रूप सत जा का सत स्थान,
0: सत के बल प्रदान,
1: करतूत सत सत जा की वाणी,
0: सत पुरुषा माहे समानी,
1: सत कर्म जा की रचना सत,
0: मूल सत सत उत्पाद,
1: सत करणी निर्मल निर्मली,
0: जिसे बजाए तिसे सब बली,
1: सत नाम प्रभु का सुखदाई,
0: विश्वास सत नानक गुर ते पाए,
1: सत वचन साधु उपदेश,
0: सत जान जाके हृदय प्रवेश,
1: सत निरत बुझे जे कोई,
0: नाम जपता की गत होए,
1: आप सत किया सब सत,
0: आपे जाने अपनी मित गत,
1: जिसकी सृष्ट सो करण हार,
0: अवर ना बूझ करत विचार,
1: करते की मित ना जाने किया,
0: नानक ज्योतिष पावे सो वर्दी,
1: विस्मन विषम पये विस्माद, प्रभु के रंग राज न रहे,
0: गुर के वचन पदार्थ ले,
1: वही दाते दुख काटन हार,
0: जाके संग तरे संसार,
1: जन का सेवक

0: अपने सेवक की आप पत रख
1: ताकि गतमत कोई न लागे
0: प्रभु के सेवक को न पहुँचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया
1: नानक सो सेवक दे दिस प्रगटाया
0: निकी कीरी महकल रख
1: असम करेला कर कोड लाके
0: जिसका शासन काट आप
1: ताको राख दे कर हाथ
0: मानस जतन करत बह पात
1: किसते करत फिर थे जा
0: मारे न रखे अवर न कोई
1: सर्व जी आका रख सो
0: काहे सोच कर है रे प्राणी
1: जब नानक प्रभु लाख बड़ानी
0: भारंग बार बार प्रभु जपी है नाम रतन जन गुरमुख पाया
1: इसका शवर नाही दिसाया
0: नाम तन नमो रूप रंग
1: नमो सुखर नाम कसा
0: नाम रस जो जंत्र पताने
1: मंता नामे नाम समाने
0: उठत बैठत सोबत नाम
1: नानक जन के सदका
0: बोलो जस जे बाद रात
1: प्रभु अपने जन की नींद
0: करह भक्ता तुम कह चाहे
1: प्रभु अपने सो रह समाए
0: जो हो आहो बत्सो जन
1: प्रभु अपने का हुक्म पछाने
0: जिसकी महिमा कौन बखानो
1: जिसका गुण का एक न जानो
0: आठ पहर प्रभु बस है हजूरी
1: नानक से जन बूरे
0: मन मेरे तन की ओट ली
1: मन तने अपना दिन जान दे।

0: संत जनामिल करहु विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: अवर भाव समीत विसार हो,
1: जनक अमृत में अरदार,
0: करुण कारण सो प्रभु समरथ,
1: निर्कर कहो नाम हरवात,
0: यह तन संच हो भगवान,
1: सांजना का निर्मल मंत्र,
0: एक आस रखो मन वाहे,
1: सर्व रोग नानक मिट जाए,
0: जिस तन को चार कुंड उठता वह,
1: सो तन हर सेवा ते बाहे,
0: जिस कौन तो बाछ मीत,
1: सो सुख साधु संग अप्रीत,
0: जिस शोभा को करह पली करनी,
1: सासो बाप झर की सानी,
0: अनेको पावी रोग न जाए,
1: रोग मिटे हर औखद लाए,
0: सर्व निदान में हर नाम निदान,
1: जब नानक दरगे परवान,
0: मन पर बुद्ध हो हर के नाए,
1: ताको
0: विघ्न न लागे कोई,
1: जाके हृदय बसे हर सोए,
0: कलता तीठा डा हर नाओ,
1: सिमर सिमर सदा

0: परम की दृष्ट महासुख हो जनता ख्यासे जन त्रिपता ने
1: सुबर
0: प्रेम रस रंग
1: जाओ साध के सरे
0: शरण आन सब त्याग
1: अंतर प्रकाश अंदर निवला
0: बड़ भागी जपया प्रभु सोई
1: नानक नाम रते सुखोए
0: सेवक की मनसा पूरी पही
1: सदगो ते निर्मल मतलई
0: जन को प्रभु होयो दयाल
1: सेवा की नो सदा निहार
0: बंधन काट मुक्त जन भया
1: जन्म मरण दुख प्रम गया
0: इस पुण्य श्रद्धा सब पूरी
1: राबरे आशा संग हजूरी
0: जिसका सातन लिया मिलाई
1: नानक भक्ति नाम समाए सो
0: क्या बिसरे जे काल न पहन
1: सोका बिसरे जे किया जाने
0: सो क्या बिसरे जन सब कुछ दिया
1: सोका बिसरे जे जीवन जिया
0: सो क्या बिसरे जे अग्न मह रखे
1: दुर्बल साध को बिल्ला लाखे
0: सो क्या बिसरे जे बिखते काट
1: जन्म जन्म का टूटा गांडे
0: गुरपुर तत एह बुझाया
1: रब अपना नानक जन दिया
0: साजन संत करो इहो काम
1: मानते आप जपो हर नाम
0: सिमर सिमर सिमर सुख पाव
1: आप जपो अवरे नाम
0: भगत भाई तरिया।

0: प्रीत प्रेम रस चाओ
1: मानतने अंतरे सो
0: नेत्र पेख दर्श सुख होए
1: मान विक से सात चरण तो
0: भक्त जना के मंतन रंग
1: निरला को उपावे सान
0: एक बस दी जय कर मया
1: गुरबसा नाम जप ले
0: ताकि उपमा कहीं ना जाए
1: नानक रहा सब समाए
0: प्रभु संत दीन दयाल
1: भक्त बचल सदा कृपा
0: अनाथ नाथ गोविंद गोपाल
1: सर्व कटा कत प्रथ पार
0: आदि पुरुष कारण करता
1: भक्त जना के प्राण दान
0: जो जो जपै सो होए पुनीत
1: भक्त पाए लावे
0: मन हित यार नीच अजान
1: नानक तुमरी सर्व पुरुष भगवान
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए
1: एक निमक हर के गुण गाए
0: अनेक राज भोग बढ़ियाई
1: हर के नाम की कथा मन पाए
0: बहु भोजन का प्रसंगीत
1: रसना जपती हर हर नी।

0: जब अकार कछ न दृष्टि
1: तब तब कहते हो
0: जब धारी अपन सुन संवाद
1: पैर विरोध के संकमा
0: जब इसका वर्ण चिन्ह न जाप
1: तब सो को किसे
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: कहा के सोबत
0: अपन खेल आप वर्ती जा
1: करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभु केवल तनी
1: मुतको किसको गनी
0: जब एक है हर अगम पार
1: नरक स्वर को कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभु सहज
1: सुभाई तब शिव सरत कहो कित
0: ढाई जब आप है आप अपनी जोत धरे
1: तब कब निडर कब कद डरे
0: अपन चलत आप करने हार
1: नानक ठाकर अगम पार
0: अबना शीशक अपन आसन
1: जन्म मरण को कहा बना
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोई
1: तब जम की त्रास कहो के सोई
0: जब अवगत गोचर प्रभु एका
1: तब चित्र गोत किस पूछत लेका
0: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधि
1: कौन छुटे कौन बंधन
0: अपन आप ये चर जा
1: नानक अपन रूप आप ये पर जा
0: निर्मल पुरख पत होता
1: मन मैल कहो क्या तो
0: जह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: कौन का मान कौन अपमान
0: जह स्वरूप केवल जगदीश
1: छिन्न लागत को की
0: जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: किसे भूखम तृप्ता
0: करन करावन करने हार
1: नानक कर देगा नाही समार
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई
1: तब कवन भाई बा मित्र
0: जय सर्व कला आप है प्रवीण
1: वेद देव कहाँ कोची
0: जब अपन आप और तारे
1: सगन सवन कहाँ विचार
0: जय अपन ऊज अपन आप नीरा
1: कौन ठाकर कौन कहिए चेरा
0: विस्मन विस्म रहे विस्माद
1: नानक अपनी गत जानो
0: जय असल शेद भेद समाया
1: किसे व्याप्त माया
0: आपस को आप है आदेश
1: योगन का नाई परवेश
0: जय एक है एक भगवंता
1: कौन चिंत के लागे चिंता
0: जय अपन आप पतियारा
1: कौन कथे को सुनने हारा
0: बहुत ऊच दे ऊंचा
1: नानक आपस को आपे पहुंचा
0: जय आप रचियो प्रपंच आकार
1: योगन में की नाम विस्तार
0: आप पुनत है पही कहावत
1: नर को स्वर्ग विशावत
0: आल जाल माया जंजाल
1: मोह में मोह परम पैबार
0: दुख सुख मान अपमान
1: अनेक प्रकार कियो बखान
0: आपन खेल आप कर दिखे
1: खेल सोचे तो नानक के
0: जय भगत भक्त है आप
1: जय बसरे पर सात संत प्रताप
0: दुख पाख का आप है तनी
1: उनकी शोभा उन्हों बनी
0: आप है कौतुक करे आनंद चूज
1: आपे रस पोकन
0: जिस पावे तो

0: हर के गुण गाए,
1: मनन तर विश्वास कर मन
0: कर्ण हर नानक एक जाने,
1: जनला गहर एक अनाई,
0: इसकी आस न मृति जाए,
1: सेवक को सेवा बन आई,
0: हुकम भूष परम पद वाई,
1: इससे ऊपर नहीं विचार,
0: जाके मन बसे अहंकार,
1: बंधन तोर पहे निर्वैर,
0: अंदर पूजे करके
1: लोक सुखी पर लोक सुहेले।

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु संगत जीओ, कल नू समाप्ति वाला दिहाड़ा है अते सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जीयां दा पावन शहीदी दिहाड़ा भी कल नू ही है। सुहाब संगतां दे चरणां विच बेनती है आप जीयां ने वध चढ़ के कल दर्शन बख्शणे, श्री सुखमनी साहिब जी दे जापां विच हाजरियां भरनियां। 5:30 बजे श्री सुखमनी साहिब जी दे जापां दी समाप्ति दे नाल ही सच्चे पातशाह जी दे शहीदी दिहाड़े नू मुख रखदिआं होइआं आप समूह संगतां दी चढ़दी कला वास्ते श्री सहज पाठ साहिब जी दे भोग भी पाए जाणगे, फिर अरदास अते हुक्मनामे होणगे। उपरंत ठीक 9 बजे श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग प्रारंभ होणगे। सो आप संगतां ने 9 बजे श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोगां समें भी हाजरियां भरनियां। कल शाम 6:40 तो 8:40 तक महान कीर्तन दरबार सतगुरां जी दे पावन शहीदी दिहाड़े नू मुख रखदिआं होइआं हो रिहा है। सुआब संगतां ने शामां दे दीवानां विच कीर्तन दरबार समें भी वध चढ़ के पहुंच के हाजरियां भरनियां। पाठ बोध समागम 6 जुलाई तो 16 अगस्त तक उलीकिया गया है। जोड़ा कर दे बार गैलरी दे विच लॉबी दे विच इश्तिहार लगे हुए ने, उन्हां दे उपर रजिस्ट्रेशन QR कोड है, उन्हूं आप जी स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र बाणी दा पाठ बोध प्राप्त करके शुद्ध गुरबाणी उचारण सिखिए, सच्चे पातशाह जी दे दरों करों खुशियां प्राप्त करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

नानक हर गुर जाको दिया जुगो जुग अटल छवर छतर तखत दे मालक लोक अते परलोक

तुर कर्म पाया तुद जिन कौसे नाम हर कै लागे। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी।

छेती भज समझ के अपना छेती पर ढूंढ ले जाना कर आवो लड़की दा रिश्ता लभ के ठीक कराना कर आवो लड़की दा रिश्ता लभ के ठीक

बाग सुरग दे नक्शा हो बे बाग सुरग दे पुत्री लई टिकाना कर आवो लड़की दा रिश्ता लभ के ठीक कराना कर आवो लड़की दा रिश्ता।

तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारन हारा।

कबियो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट

कारण कहो आज संघरिया पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना ते आऊं जो बार चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ द मुझे उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया

हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो। घट घट के

निर भउ हर जियो सोए सतगुर सेवै हर मन वसै तिथै भउ कदे ना होए भै विच सब आकार है निर भउ हर जियो सोए सतगुर सेवै हर मन वसै

जिस अंतर हर गुण कारी तिस मिलिए सतगुर प्रीत मै जिन हौमै विचहो मारी सो सतगुर पूरा धन धन है।